रुकी दे रुकी में रुकी जम रुकी जा रे रुकी हुले रुकी हर से रुकी नाम रुकल बहाली जिंदगी को बहाली सो हाली अल्लाह रब उबुते वो आने उबीने उबुते